0: और मैं पाचू
1: इटी विनो और रेडियो पियम चुन के रे वेर क्वारो
0: पियम चुन के रे वेर क्वारो
1: बिमारा मैं पाचू
0: बिमारा मैं पाचू
2: यू आर लंग यू बी डू टेल आ लोका कम पेने
1: इटी विनो और रेडियो

0: मैं पाचू
1: इटीविनो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो पियूम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचू
1: इटीविनो और रेडियो

0: मार मैं पाचो
1: ईटी विन्यो और रेडियो ईटी विन्यो और रेडियो
2: कावानो ट्यू केरे चेक को मुआ केरे रियो नी मेलो बनी केरे नायो मैं वानो ट्यू केरे मैं पायो को आयो चेरे आमे चिकिडो मनुरु मुझे चोबो चंगवांगो कहाँ